लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا
1: الف لا

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا فرمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، کچھ بریکنگ نیوز ہوتی ہیں، جب بھی ملتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو موسم بھی تو آج بہت اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، ٹیمپریچر بھی کافی بڑھ چکا ہے، لیکن سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، چونکہ حکومت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، وزراء ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، ابھی مکمل تو نہیں ہوا لیکن بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کون سے وزراء بن رہے ہیں اور کون سی غیر ملکی مسلمان بھی جو ہے وہ وزیر بننے جا رہی ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے تجزیہ نگار عدنان امین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: السلام علیکم رضا صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کیسے ہیں رضا صاحب؟
1: اللہ کا شکر ہے۔ عدنان، میں نے بات کی گرمی کی، سیاسی ٹیمپریچر تو اب کم ہو رہا ہے چونکہ حکومت بننے جا رہی ہے، اور آپ کیا کہیں گے؟
2: ہاں رضا صاحب، موسم تو کافی گرم آ گیا، اور اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا ایک بندہ کہہ سکتا ہے، اس کی بڑی عجیب خوبصورتی ہے، چیز ہوتی ہے قدرت کی بھی۔ کیا آپ دیکھے، جب یہ گورنمنٹ پہلے کانگریس گھومتے آیا تھا تو اس کا کافی گرم موسم آ گیا تھا، اور جب لاسٹ لوکے نے دوسری عورتیں کی تھی تو بارش شروع ہو گئی تھی، تو جب وہ ختم ہوئی ہے پھر دھوپ آ گئی ہے۔ تو اللہ کرے اس دھوپ کی کیا کہتے ہیں نشانی یہ ہوگی گورنمنٹ کوئی اچھا کام کرے گی، کیونکہ اب سورج ان کے قسمت میں، موسم کافی گرم ہے اور ان کے لیے بھی کافی ہاٹ ہے اندر، کیونکہ جب نیگوشیشن چل رہی ہوں تو پھر تو کافی ہاٹ ہوتا ہے۔ اور خبر یہی ہے کہ ہاں، آپ نے جو بریکنگ دی ہے کہ ایک مسلمان ہے، اس کا چانسز ہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی کوائٹ شیور ہے کہ وہ 95% مسٹر بنے، پر کھیل ویسے تک گورنمنٹ میں گئے تو اس کا چانسز کافی ہیں، وہ ماتھا لیکو کے ساتھ بنے گی، کیونکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس نے پرسنلی ووٹ بھی اپنے چیئرمین سے 1000 زیادہ ووٹ لیا تھا جب الیکشن ہوا تھا، اور وہ کافی پاپولر ہے اس پارٹی میں، اور وہ پر کھیل ویسے تک کی نیگوشیشن ٹیم میں بھی ہے، وہ ڈیل اس وقت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک گورنمنٹ کیا کہتے ہیں تیار ہو جائے گی۔
1: تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈیکیل کو 2000 ملنے جا رہی ہیں؟
2: جی، میرے خیال سے ان کو 3 ملیں گی، مرغات کو بھی 3 ملیں گی، اور 3 or 4 ملیں گی، اور باقی پھر ایسے اور سوشل ڈیموکریسی ہے، کیونکہ اس میں ایک اور وجہ بھی ہے کہ لاسٹ لوگ کی جو اس کی خواہش ہے کہ مسٹر 25 سے کم ہوں، لاسٹ لوگ کی تو خواہشیں کافی ہیں، مگر وہ تو بندہ کہہ لے کہ اس قسم کا، وہ تو ایک قسم کا اس کے پاس تو اب اتنا کہنے کے لیے ہے ہی نہیں، جو اس کی گیم کھیلی تھی اس کا تو اس کو الٹا ہی اثر پڑا ہے، تو اس کے پاس تو اب یہی ہے کہ وہ بیٹھ کے ہاں ہاں کرتا جائے، اس کے لیے فائدہ یہی ہے، کیونکہ دوبارہ الیکشن میں نہ جائے، دوبارہ الیکشن میں گیا تو میرے خیال سے وہ تو نمی کو اٹھا لے گا، تو اس لیے وہ تو پھر آپ دیکھتے ہیں۔ میری اپنی ہے کہ 20 to 22 مسٹر ٹوٹل بنیں گے، جس کے اندر 60-8 ملیں گے سوشل ڈیموکریٹس کو، اور 5-6 ایس ایف کو ملیں گے، اور پھر باقی کا دیکھا جائے گا یہ دونوں کتنے دیتے ہیں۔
1: تو باقی ظاہر ہے جھونگے کی بھی کوئی نہ کوئی وزارت تو ہوگی، تو لیکن یہ بلو بلاک کو اس کا مطلب ہے شکست ہوئی۔
2: ہاں، ان کی تو شکست کافی بڑی ہوئی، اور ان کی بڑی کیا کہتے ہیں، بڑی لاسٹ ہے کہ یہ نہیں حکومت بنا سکے جب موقع تھا۔ میرے پہلے صاحب، وہ بھی تو دیکھا جائے نا، وہ بھی مشکل تھا، کیونکہ جب میرس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ڈائریکٹلی کہہ دیا تھا کہ لاسلو کا مسٹر نہیں بن سکتا، تو پھر تو آپ سے مشکل ہی تھا، کیونکہ سب کو پتا کہ لاسلو کے دماغ میں ایک ہی چیز ہے کہ وہ مسٹری دینا چاہتا ہے، اور وہ اس کی یہی خواہش ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ بھی تو ہے نا کہ یہ بھی تو ابھی دیکھنا ہے نا کہ پارلیمنٹ کا چیئرمین کون بنتا ہے، کیونکہ جو جو جو جو جو فالکے سنگھ سو مین ہوتا ہے، اس کی تہاں بھی اتنی ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہوتی ہیں، کافی ہوتی ہیں، اور اس کی تہاں بھی اتنی ہوتی ہے جتنی سٹیٹس منسٹر کی ہوتی ہے، تو ایک قسم اس کے قریب ہی ہوتی ہے۔ سو اب یہ بھی تو دیکھنا نا کہ فالکے سنگھ سو مین کون بنتا ہے۔
1: تو یہ پہلی دفعہ آ رہی ہے حکومت میں ایس ایف، یا کہ پہلے بھی حکومت میں رہی ہے؟
2: پہلے رہی ہوئی ہے، لیٹسٹ جو رہی ہے، لیٹسٹ جب یہ رہی تھی، اور कि वो थी 2011 में जब वो बनी थी हेलचोम स्मिथ, उस वक्त हुकूमत में थे ये, और ये सेकंड टाइम है। तो उस वक्त इनका काफी नुकसान हुआ था क्योंकि इनकी पॉलिसी इतनी नहीं थी कामयाब हो सकी।
1: तो इन इस लिस्टन को वजारतें तो नहीं मिल रही, लेकिन कोई पोस्टें तो ज्यादा डेफिनेट मिलेंगी।
2: सब वो पोस्टें तो उनके पास नहीं, उनको इतनी है, वो हो सकता है कि उनको कोई जो फॉल के चेंज स्कूल वाला है उसके अंदर कोई उनको स्टॉक पोजीशन मिल जाए। मगर देखा जाए तो टेक्निकली तो उनके पास क्या कहते हैं पार्लियामेंट का आखिरी मंत्री तो उनके पास ही होंगे ना। और मेरे ख्याल से जो जो जो लास्ट लुकी की स्पेल है कि जो मैं दिमागी तौर पे एनालाइज की तरह देखूं, तो वो मेरे ख्याल से ये स्पेल खेल रहा है कि ये गवर्नमेंट बन जाएगी तो बाद में जब क्या कहते हैं बजट वगैरह बनाने हम करेंगे तो मैं बेचता और कंसर्वेटिव का अंदर ले आऊंगा, पर उसका तो उसको फायदा कोई नहीं है क्योंकि वो उनको लाने की अंदर कोशिश करेगा तो जो पार्लियामेंट है कौन ले टीम वो फिर इस हुकूमत को बिल्टा कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अपना अपना हिसाब देख रहे हैं इस वक्त, मगर इंसलेशन काफी क्योंकि जो आपने शुरू में बात की है जैसे कि एसएफ गवर्नमेंट में रहा है कि नहीं रहा, तो उससे बंदा देखे तो इंसलेशन ने काफी सबक 2011 से सीखा हुआ है क्योंकि आपको शायद लोगों को व्यूअर को इलम ना हो, शायद आपको इलम हो कि 2011 में एक इश्यू बना था बहुत बड़ा, वो ये बना था कि इंसलेशन के साथ एक स्कैडर का फॉर्म बन गया हुआ था। जब वो स्कैडर का फॉर्म बन गया हुआ था ना तो हेलिसोन स्मिथ और प्यान कौन तक जो छोड़ गया हुआ सियासत जो आजकल डीआर का डायरेक्टर है कैनाल डायरेक्टर बन चुका हुआ है, उसने ना आखिरी मिनट में प्लो प्लॉक के साथ बना ली और वो बात इंग्लिश लिस्टनिंग को आज भी याद है। और वो इसीलिए क्या कहते हैं कल उनकी करीबन कल 2.5 घंटे की मीटिंग रखी गई हुई थी, मगर वो मीटिंग 5.25 घंटे हुई है क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने उस एक्सपीरियंस से सीख लिया हुआ है कि हमने अपने मंत्रेरा जो है ना सही तरीके से इस्तेमाल करने हैं। और आज जो निगोशिएशन है जो 5 बजे रात को शुरू होंगी, उससे पहले कॉन्गली ओनासोया ने जो दो ग्रीनलैंड के और दो फेडरल आयलैंड के मंत्रेरा हैं उनको भी बुलाया हुआ है कि उनकी क्या ख्वाहिशें हैं। सो एक किस्म का देखा जाए ना तो ये होमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि कम से कम 2-2.5 साल तो ये गवर्नमेंट चल सके,
1: 2-2.5 साल हुकूमत चल सके। तो अदनान, ये आपने देखा होगा कि जो गैर मुल्की लोग सियासत करते हैं या जो गैर मुल्की सियासतदान हैं, पार्टियों के मेंबर्स भी हैं, तो ये पावर पॉलिटिक्स करते हैं, आप क्या कहेंगे?
2: साहब देखिए, मैं इस पे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं इस बात बड़े क्वेश्चन होते हैं, आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपका पार्टी का एजेंडा क्या है, आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है, आपकी पार्टी के अंदर चीजें क्या है। हाँ डेफिनेटली हो सकता है कि हर चीज में आप शामिल ना हों, मगर जब आप सियासत के अंदर बढ़ते हैं ना तो आपको हर मसले का मसाइल का जो होता है ना उसको लेके चलना होता है। और इस वक्त जो सूरत हाल डेनमार्क की चल रही है जिस वजह से ये क्या कहते हैं हुकूमत बन नहीं रही और बननी थी रही, वो यही है कि जो एक मॉनली पॉलिसी है ना उसमें बड़ा गौर किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल है कि 2-3 साल के अंदर हो सकता है कि माइनस की तरफ जो स्टेट बजट होता है वो जा सकता है, बंदा सही तरह से ना बने। तो बंदे को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब बंदा पॉलिसी में जाता है बंदे को हर चीज का नहीं मालूम होता, पर इतना तो पता हो कि बंदा किस जगह पे खड़ा है और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही, एडमिसलोन में एक आएंगी, ग्लोस्टो में दूसरी आएंगी, टॉस्टो में तीसरी आएगी। अब इस वक्त जो जो जो सूरत हाल है, आज हो गई है 28 मई, हुकूमत अगले हफ्ते जाके बने जून के अंदर कह लेते हैं पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते, 1-2 हफ्ते वो लगाएंगे चीजें चेक करने में, जुलाई मंथ में फिर करीबन जाके आपको पता चलेगा कि कमून रीजन के बजट क्या है, अल्लाह करे पहले पता चल जाए होमवर्क हो गया हो, मगर मिड जून में पता चलेगा जो मई में पता चल जाता है। तो हमारे सियासतदान को ये बड़ा रखना चाहिए कि हमने जब ये बजट आएगा उसको कैसे लेके चलना है, कहाँ पे कैसे कमी पेशी क्या है, कहाँ पे खर्चे हैं कहाँ पे खर्चे नहीं हैं, क्योंकि ये हमेशा राजा सब याद रखना चाहिए कि हर चीज़ के खर्चे होते हैं। और मैं तो एक एग्जाम्पल एमसलून में रह रहा हूँ, मुझे पता है कि किस एरिया में कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ पे हैं। अल्लाह का शुक्र ये है कि जो मुझे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन वो है कि इधर की जो कमूने हैं अभी तक ठीक है, मगर सूरत हाल बनने का कोई पता नहीं चलता। और ये चीज़ें बनने को गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि जैसे मोटी एग्जाम्पल है, जब हमने एफआरबी में इलेक्शन लिखा था, हमने मेरे ख्याल से जुमेरात वाले दिन इलेक्शन लिखा था, हफ्ते वाले दिन ट्रंप ने ईरान पे हमला कर दिया था, पूरी गेम चेंज होगी, सूरत हाल पूरी चेंज होगी। हमें पता था कि कोई चीज़ है, और ऐसे सूरत हाल कभी भी चेंज हो सकती है,
1: ऐसी सूरत हाल कभी भी चेंज हो सकती है। तो अदनान, बाकी ये ब्रेकिंग न्यूज आज ये भी चल रही है कि आप जो साइन करते थे, आप अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराते थे तो 20,000 साइन की ज़रूरत होती थी और चेक एंड बैलेंस भी था, तो अब जो है वो 50,000 तक की जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं, और उसके साथ मुख्तलिफ सियासतदान भी बयान अपने अपने दाग रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
2: राज साहब, ये इन्फॉर्मेशन सही है, इसके अंदर ये हुआ है कि ये बात इसलिए चली है कि जब इलेक्शन हुआ था ना 24 मार्च को मंगल वाले दिन, 3 दिन बाद ही ना एक पार्टी से ना बंदे पहले उसने निकाला, फिर दूसरा उसका छोड़ गया, फिर एक और आ गया बीच में, वो उसकी पार्टी का था, वो नेपाल राग से का था, मगर वो बहुत दूसरी बात थी, वो कैम्बिस का वो उसका केस है, मगर उसने खुद ही जब आप ही भी उसने किया हुआ था वो नहीं है, तो पौन इस पक्षी का एक मिनट रह गया हुआ है। तो वो उसके बाद से ये तपैद चाह रहा है कि बंदा स्पैंक खान से 2% का 4% करे कि ज्यादा होना उसका इफ्ता करे या क्या करे, क्योंकि मसला ये है कि जो जो सूरत हाल पौन इस पक्षी के बाद बनी है ना, उसके बाद ये बड़ा तपैद चल रहा है। मेरी अपनी पसंद राय ये है कि बंदे को मैं तो अभी कहना कुछ नहीं चाहता, क्योंकि जैसे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ भी हूँ, और मैं अपनी राय दूँ तो इनको थोड़ा बहुत सिस्टम का कोई ना कोई करना पड़ेगा कि बंदा चेक एंड बैलेंस रखे, क्योंकि दोबारा सूरत हाल ना हो के इस वक्त मेरे हाथ से, मेरे इलम में नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर अभी पार्लियामेंट इलेक्ट ही ना हुई हो तो चार लुइस किंग बैठ जाए, ये जरा बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत बंदे को देखना चाहिए। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जो आर्गुमेंट आया है कि पहले बंदे को क्या कहते हैं जाके खुद लिखा के भेजनी पड़ती थी, अब आप कंप्यूटर से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, मगर मेरी पर्सनल राय आप पूछें तो इसका कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि बंदा इलेक्शन हो तो 3 या 4 बंदे पहले लिस्टिंग में हैं, ये जरा थोड़ा क्या कहते हैं कोई ना कोई चेकिंग होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए इसका, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जो जो बात चल गई है वो चल गई है। मैं समझ सकता हूँ कि लोग इस बात पे परेशान होंगे कि 5.8 मिलियन बादी है डेनमार्क में, तो 50,000 उनका हफ्ता लेना बड़ा मुश्किल भी है, मगर वो भी सेम चीज़ हो सकती है, फिर बंदा एक बीच में हल कर सकता है, जैसे एक ने कहा था कि हम 3.0 स्पैंक्स कहाँ से कर देते हैं, बीच का हल ले आते हैं, तो देखते हैं अब क्या बनता है राजा साहब, मगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना कि बंदा एक पार्टी सेंसिबल हो, क्योंकि जो ये पौन पक्षी का हुआ था ऐसे होना तो नहीं था कहीं।
1: बजाय पार्टी के अदनान, अगर जो है मेंबरान पर ये पाबंदियां इस तरह की लग जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है
2: भाई, उसके अंदर वो भी तो मसला है, वो भी बंदा देख सकता है, अगर वो ये ना राजा साहब फिर वो बंदा ये करना पड़ेगा कि बंदा अपना मैंडेट नहीं लेके जा सकता, मगर वो भी हाल है, मगर कोई ना कोई हाल तो इनको करना पड़ेगा कि बंदा सेम सिचुएशन में ना आए, क्योंकि आप देखें अब एक देखें ना जिस तरह ये आप कह रहे हैं कि लो ब्लॉक अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, हम अब एक सिनारिया देखते हैं कि वो लास्ट लोगों को भी इकट्ठा कर लेते और मॉर्टमेसमर को भी इकट्ठा कर लेते, तो फिर उनको ये चार लुईस किंग भी साथ लाने पड़ने थे, चार वो क्या कहते हैं पेडुला ग्रीनलैंड के लाने पड़ने थे, कुछ करना पड़ना था। वो तो एक क्या कहते हैं ना जीप सारी कुमत बन जानी थी, और सबने यही कहना था ना कि इलूला लंगरी गवर्नमेंट है, ऐसा बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं। इसके बाद फिर इन्होंने गौर किया, हाँ मैं ये समझ सकता हूँ कि जिनने ये डिबेट शुरू किया अल्थाना चूक ने और उनने उनको भी पता है कि ये डिबेट बड़ा कॉन्फ्लिक्टशियल है, क्योंकि वो दोनों आप देखिए ना पिछले इलेक्शन से लेके आज के इलेक्शन तक 2022 का भी इलेक्शन देख लें, 2026 का भी इलेक्शन देख लें, अल्थाना चूक तो स्पैक खानसर के साथ क्या कहते हैं खुद डांस करते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बंदा सोच समझ की बात उनने की होगी, और उनको भी पता है कि ठीक है उनने 50,000 की यूनिसेफ की इसलिए बात की होगी कि वो डेफिनेटली 50,000 यूनिसेफ की बात करेंगे, मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि स्पैंग्स कान से ऊपर हो जाए, क्योंकि वो खुद उस डांस के अंदर लगे होंगे, तो फिर क्या कहते हैं तो बंदा कह सकता है, क्योंकि उनके लिए भी 3.0 हो जाए तो काफी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी, क्योंकि ये करीबन उनको काफी वोट लाने पड़ेंगे, 2.4-2.5 था उनका इस बार मेरे हाथ, तो फिर ऑब्वियसली वो हो जाता है, मगर इस पे कोई ना कोई बात तो चलेगी, और ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ नतीजा आएगा, और हो सकता है कि हमारी जो बाकी की पार्टियां जो ब्लॉक ब्लॉक वाले हैं लीला वाले जो बन रहे हैं ये जब सारा फाल्के सिंह बैठ जाए तो क्या कहते हैं फिर क्या क्या क्या, क्या देखें, क्योंकि व्यूअर्स को एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी तो दे देना कि नॉर्मल फाल्के सिंह का आउटलुकिंग स्टेपेट इस हफ्ते होना था मगर वो ऊजकूट हो गया हुआ है, क्योंकि उसका कोई वजह नहीं थी करने की, क्योंकि टेक्निकली जो होता है पार्लियामेंट वो 1 जून से लेके 1 अक्टूबर तक एक किस्म की ऐसा काम तो वो कर रहे होते हैं मगर फाल्के सिंह सेल नहीं लगती उसके अंदर, खाली फैंस लॉ वाले जन वो बैठते हैं या वो पेश करते हैं तो वो ऊजकूट हो गया हुआ है, जितनी देर तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी और गवर्नमेंट के बाद वो डिसाइड करेंगे कि पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा चलाना है कि नहीं चलाना है, क्या करना है।
1: अदनान क्या बात है कि एक वक्त था कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर मेंबर बनते थे सोशल डेमोक्रेट के और उसके बाद SFM भी जाते थे और वेंस्टा में भी जाते थे कंजर्वेटिव में भी जाते थे, लेकिन जो गैर मुल्की निसाद थे वो SF में और ज़्यादातर जो हैं वो सोशल डेमोक्रेट में जाते थे। अब देखा है कि रुझान बनता जा रहा है कि SF फिर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है गैर मुल्कियों की वजह से।
2: यह बात सच है क्योंकि बात वही आती है ना क्योंकि लोग ना लोगों को इनवान तपुलचिक की वजह से बहुत सारे लोग जाने लग पड़े हैं और वो बात आपकी सही है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं आपके व्यूअर्स को भी मैं बता दूं आपके भी हो गए एक बात मैं सॉरी मैं इस बात को बात करना चाह रहा हूँ बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि परसों चौथ ईद के एक दिन पहले उसमें आपको भी इलम होगा एक वाकया हुआ है और मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि उसका इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इस बात को उठाया जाए कि ये जो डिबेट जा रही है इनमानता के बारे में मुसलमानों के बारे में और इस चीज के बारे में इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं ना होगा जो जैसे वो अहूस मस्जिद के अंदर आग लगाने की कोशिश की गई है, तो इस बात को भी देखना पड़ेगा कि इस डिबेट का कोई क्या कहते हैं उल्टा कॉन्सिक्वेंस तो नहीं ना होने लगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि उस मस्जिद में कुछ हुआ नहीं है, उस वक्त शायद एक बंदा अंदर सफाई कर रहा था कि क्या कर रहा था जिसने ये क्या कहते हैं जिसको पता चल गया था, वरना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, और ईद के दिन हज वाले दिन और अल्लाह का शुक्र है कि कोई डैमेज नहीं हुआ इतना ज्यादा और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कमिंग डेज में ऑब्वियसली उसके बारे में पता किया जाएगा कि क्यों हुआ, क्योंकि ये बातें भी लोगों को बताने की बड़ी जरूरत होती है कि ये जो डिबेट होती है ना इसको उल्टे कॉन्सिक्वेंस भी हो जाते हैं।
1: अदनान क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, अदनान, ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अब सियासत जो है लगता है कि कारोबार की शक्ल में ज़्यादा चली गई है। कारोबार से मुराद है सियासी कारोबार जो है कि बंदे को ताकत मिलती है, वक्त मिलता है। जिस तरह एकदम आपने बताया कि अभी हुकूमत बनने से पहले चार जो है लिस्ट कोंगा हो गए हैं, तो ये कानूनी तौर पर इजाज़त होती है ना? परिंदा उड़ के इधर से उधर चला जाता है या किसी जगह बैठ जाता है, सहूलियात तो उसको सारी मिलती हैं, दाना तो उसको सब कुछ मिलता है।
2: राजा साहब, यही तो बात है ना कि ये जो इस बार हुआ है और पिछली बार भी हुआ था, दो तीन गए थे और मसला पड़ा था, तो इसीलिए वो अब ये सारे कानून चेक करना चाहते हैं ना, बदलना चाहते हैं कि ये कारोबार ना हो। ये एक सीरियस क्या कहते हैं चीज होती है, क्योंकि जब आप एक जिम्मेदारी लेते हो तो आप ये जो 179 है लोकल काउंसिल में 21 हो और 42 हो 43 हो, इनके ऊपर एक पूरे सिटी या पूरे मुल्क की जिम्मेदारी होती है। और ये कोई आसान काम नहीं है कि आपने एक कानून बनाना है, अपने पूरे मुल्क को देखना है। इसीलिए इस चीज को बंदे को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बंदा किसी पार्टी का मेंबर है, उस पार्टी के अंदर गया है, तो कोई ना कोई वजह तो बंदे की है ना कि उसने उस पार्टी को चूज किया होगा। और बंदे को बड़े सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि बंदा जब मेंबर होता है, बंदे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
1: अदनान, पार्टी में जाने के वक्त भी नजरियात होने चाहिए, छोड़ने के वक्त भी नजरियाती वजूहत होनी चाहिए।
2: सर साहब देखिए, आप जब पार्टी ज्वाइन करते हैं, आप उनकी पॉलिसी पे जाते हैं, आप अपनी कमिटमेंट पे जाते हैं, आप एक एक एक, एक चीज पे जाते हैं। मैं शॉर्ट वे में कहूंगा कि मेरा रेड ब्लॉक के साथ बड़ा था, और ऑब्वियसली हो सकता है कि मैं जब अपनी वे से देखूं और 5-6 महीने बाद देखूं कि नहीं, ये बंदे ने रेड ब्लॉक की तरफ मेरा है, मगर हमने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किसी चीज के लिए किया हो, पर वो चीज ना बंदे को आ रही हो, फिर बंदा इस रीजन को सोच सकता है कि बंदे ने अब तब्दीली करनी है कि नहीं। मगर आप ये किए कि अब आपने पार्टी ज्वाइन की है, जिस तरह ये बॉन्स 25 की जो है, इसकी तो मुझे खुद समझ नहीं आई कि ये कर क्या रहे थे, क्योंकि और इनकी वजह से आप देखिए ना, ये सारा डिबेट शुरू हो गया कि 50,000 स्पेयरिंग खान से सब कुछ क्या कहते हैं शुरू हो गया, तो ये फजूल है। मगर बंदे को क्या कहते हैं ना, अपनी पॉलिसी पे देख के चलने की कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह ताला करे कि सब के
1: इसके
2: लिए
1: साथ वोटर को भी सोचना चाहिए। वोटर भी बिल्कुल ही इसी तरह होता है, आग की तरह उड़ जाता है।
2: सब देखिए, मसला पता क्या है, मसला ये होता है कि जब आप एक पार्टी स्टार्ट करते हैं ना, अब ये बॉन्स 25 की बात कर लेते हैं, इनने कहा था कि हम पूरा जो सिस्टम है ना उसके साथ क्या कहते हैं एक ऑक्यूपाई करेंगे, और जब इनने ये बात की थी ना, तो बाद में जब इनके सारे अपने क्या कहते हैं जो चीजें बाहर निकली थी वो सारी उल्ट थी। आप ही कुछ और कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं हम कुछ और करेंगे, तो फिर आप यहां से ही देख लेना कि लोगों का क्या कहते हैं ट्रस्ट क्या कहते हैं लॉस्ट हो जाता है। जिस तरह ये लास्ट लुके ने ये जो सर्कस क्या कहते हैं शुरू की हुई है, कराई हुई थी 3-4 हफ्ते पहले भी और आज भी कर रहा है कि संगी देखा जाए, तो फिर लोगों का मिसट्रस्ट हो जाता है सियासत पे और बंदों पे कि बंदा बात कैसे करता है। आप ये कि डेफिनेटली बंदे को पता चलता है, सबको अब पता चल गया हुआ है, जितना लास्ट लोगे कि इसका एक ही क्या कहते हैं मकसद है, वो ये है कि मुझे बस मिनिस्ट्री की कुर्सी मिल जाए, सबको पता है। तो ऐसे पे बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट हो जाता है लोगों का।
1: अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। डेफिनेट मिनिस्ट्रीज में जो है वो सहूलियात भी बड़ी होती हैं, काम भी बड़े होते हैं, तो इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में दोबारा आपके साथ शामिल होंगे।
2: जी ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।
1: समय नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो कि तजिया नगार हैं, तजिया करते हैं। समय हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं, अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा टाइम हाजिर है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 31/5/2026 का प्रोग्राम है। सामिन नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप हर हवाले से जानते हैं, अगर सियासत के हवाले से नाम लें तो वो सियासत में 28 साल एक्टिव रहे, काफ लीग के सदर रहे। अगर आप सोशल वर्क का नाम लें तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कम्यूनिटी के लिए बात करें तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी का नाम लें तो सबसे सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। तो हर वो काम जो कम्युनिटी का होता है, पाकिस्तानियों का होता है, उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। मेरी मुराद है चौधरी शौकत साहब, जो कि मशहूर बिजनेसमैन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। चौधरी साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब और आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल और उनके जो भी मामला होते हैं उनको उजागर करते रहते हैं।
1: चौधरी साहब शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, ये खबरें लगती रहती है, प्रोग्राम होते रहते हैं, कौमी त्यौहार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। 28 मई के हवाले से प्रोग्राम हुए, डेफिनेट आप गए भी होंगे, सुना भी होगा, और ये अच्छी बात है। 28 मई मनाना चाहिए, खुशी की बात है, कम्युनिटी को इकट्ठा भी होना चाहिए, सबका प्रोग्राम होता है। लेकिन जो सब

0: पाकिस्तान अम्बेसी हमारा छोटा पाकिस्तान है डेनमार्क में, और माशाल्लाह जनाब शोएब सरवर साहब जो हमारे अम्बेसडर है वो पूरा अम्बेसी का अमला इस वक्त बहुत ही अच्छा काम करता है और पूरी कम्युनिटी के साथ इनका तावन होता है। कोई भी काम हो, कोई भी कहीं गैदरिंग हो पाकिस्तान के हवाले से, शोएब सरवर साहब हमेशा टाइम देते हैं, अम्बेसी हमेशा टाइम देती है। और आपको पता है ये जो इशू बना था ये काफ लीग के हवाले से जो लिखा है, मेरा इस ग्रुप के साथ कोई तल्लक नहीं है, काफ लीग के ग्रुप के साथ तल्लक नहीं है ये। और मैं समझता हूं कि ये किसी बंदे का फर्दन फैसला हो सकता है कि बायकॉट कोई करे अपना पाकिस्तान अम्बेसी का। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे पाकिस्तान अम्बेसी के साथ खड़ा हूं, पाकिस्तान अम्बेसी के साथ रहूंगा हमेशा से। पाकिस्तान अम्बेसी हमेशा से कम्युनिटी की आवाज बनी है, कम्युनिटी के मसाइल को उजागर किया है, उनके साथ होते हैं। और जो भी दिन मनाए, जो भी कोई ऐसा काम हो, जो भी ऐसा दिन हो, तो आप अप्रोच करें अम्बेस शोएब सरवर साहब से या फर्स्ट सेक्रेटरी अली स्टार साहब से, तो वो टाइम देते हैं। ये दिन इस तरह बन गया था क्योंकि ईद का दिन था, ईद के दूसरे दिन नून वालों ने प्रोग्राम बनाया था। इसमें आपको पता है कि अपने अपने मामला होते हैं, वो ये तो हम छोटे से अपने घर कुंबे की बात करते हैं, वो तो अम्बेसडर है, पूरे पाकिस्तान के अम्बेसडर है, पूरे पाकिस्तान की अम्बेसी है और पूरी दुनिया के लिए वो अम्बेसडर है पाकिस्तान के अम्बेसडर जो है। तो उनका अपने भी टाइमिंग होती है अपना, हो सकता है उनका शेड्यूल टाइट हो, उनका कोई इस तरह का हो, इन लोगों को चाहिए कोई और दिन रख लेते, ईद के दूसरे दिन ही इन्होंने रखा। लेकिन लेकिन मैं उनकी उन पे बात नहीं करता, मैं एज ए अम्बेसी के हवाले से करता हूँ। अम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही है, शोएब सरवर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ तावन करते हैं और ये बिल्कुल प्रोपोगंडा हो रहा है, बिल्कुल इसका हम बिल्कुल कम्युनिटी डेनमार्क की कोई हिस्सा नहीं है। और हमेशा से पाकिस्तान अम्बेसी ने काम अच्छे तरीके से किया है, हर मसले पे काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है किसी की जाती हो सकती है, लेकिन इसका पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कोई तल्लक नहीं है। और जो खबरें भी लगती हैं, खबर वालों को भी चाहिए कि वो अपनी तरदीद किया करें, अपना देखें इस तरह की खबरें जो है ना, पहले उनको जो है ना पिन पॉइंट करके उसके बाद ये करनी चाहिए। ये बिल्कुल इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम पाकिस्तान अम्बेसी के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान अम्बेसी के शाना बिशाना रहेंगे, शोएब सरवर के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे इंसान होने के बावजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो है ना अम्बेसडर जो है ना पाकिस्तान के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत इस वक्त दुनिया कर रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इन त्योहारों पे, इन दिनों में या कोई इस तरह की बात जो होती है उस पे पाकिस्तान की या पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बिल्कुल हम नहीं एक्सेप्ट करते। हम पाकिस्तान अम्बेसी के साथ हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह पाकिस्तान अम्बेसी के साथ रहेंगे।
1: तो सब आपका मौकफ आ गया और आपने बड़े खुले अल्फाज में अपना मौकफ बयान किया और ये आपका राइट है। समय नाजरीन, ये जो प्रोग्राम होता है ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है, तो जब भी कोई बात की जाए तो सोच समझ कर बात की जाए। यहाँ आज़ादी है बात करने की, बोलने की, लिखने की आज़ादी है। तो हम लोग जमहूरी हैं, जमहूरी बात जमहूरियत में बात होनी चाहिए, लेकिन मौके की मुनासिबत से बात होनी चाहिए। खाली प्रोपगंडे की शक्ल में एक बयान दाग देना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जिस तरह चौधरी शौकत साहब फरमा रहे हैं, ये आपका हक है बात करना, हम किसी को रोकते नहीं है कि वो बात नहीं कर सकता, कोई भी बात करना चाहे तो उसको दिए, हमारा टाइम हाजिर है, हमारा टाइम हाजिर है। चौधरी साहब आपने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया, मुल्की हालात पर थोड़ी सी बात कर ले। पाकिस्तान बड़ी अब तरक्की कर रहा है और चूंकि आप खुद बिजनेसमैन हैं, आपको पता है कि तरक्की हो रही है या नहीं हो रही। ये आप सारा कंस्ट्रक्शन का काम देखें, आपके खारियां गुजरात में आप देखें कितने तरक्याती काम हो रहे हैं। चौधरी शाफे साहब जो है बड़े काम कर रहे हैं, उनके भाई जो वजीर है हमारे ओवरसीज के वो बड़े काम कर रहे हैं, और खबरें ये भी आ रही हैं कि वो 14 अगस्त को चौधरी सालक साहब भी आएंगे। और इन चीज़ों का डेफिनेट आपको भी पता होगा, आपको इलम में होगा, आपको इत्माद में लिए बगैर तो लीडर जा नहीं आते।
0: राय साहब, जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान के हवाले से माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजान है और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की दुनिया में रिस्पेक्ट हो रही है। कुछ लोग होते हैं कि जो मनफी सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छा सोचती है, पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ देगी। और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना अब बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं पंजाब, अपने इलाके की, जैसे मेरे बात की आपने हमारे गुजरात की, तो जो है ना हमारे गुजरात में हमारे चौधरी बरादरान माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो पहले होता था कि करप्शन ये हो।

0: रहा है वो हो रहा है कि कोई भी अपोजिशन लोग भी वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, चौधरी शाफे साहब की, चौधरी सालक साहब की, कहते हैं कि बहुत शरीफ बाप के बेटे हैं, अच्छे हैं, हर बड़े अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए और अपने जिले के अपने डिस्ट्रिक्ट के तरक्की के लिए के ये काम कर रहे हैं। सालक साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ओवरसीज की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। देखें, ये पहले कश्तियां डूबती थी और उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाके दौरे करके उन्हें कहा कि हमें पैकेज दें ताकि हम लीगल तरीके से अपनी आवाम को भेजें और ताकि वो पाकिस्तान के लिए भी खिदमत करें और आप लोगों के मुल्क में जहां आते हैं वो भी लीगल तरीके से आके खिदमत करें। ये उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और अब जो प्रोपोगंडा पाकिस्तान का होता था कि ये दो नंबरी लोग भेजते हैं, इस तरह करते हैं, ये इनमें मेरे ख्याल में बहुत हद तक जो जो सालक साहब जब आए हैं तो उसके बाद ये काम खत्म हो गया है और मैं समझता हूँ ना होने के बराबर रह गया। तो बाकी भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई थोड़ा सा है वो भी खत्म होना चाहिए। लीगल तरीके से पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और चौधरी शाफे साहब जो है पंजाब में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे हैं गुजरात के हवाले से, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से वो जो है ना डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं समझता ये बेमिसाल है और इसी तरीके से ये होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अभी रुकने वाला नहीं है, पाकिस्तान इस तरीके से तरक्की करेगा तेजी से कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया की जो है ना पूरी दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने थोड़े से अरसे में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। पाकिस्तान की क्यादत ने चीफ मार्शल जो है ना हमारे हैं, वो फौज हमारी जो है अच्छा इस तरीके से किरदार अदा कर रही है, जो है ना दहशतगर्दों पे काबू पा रही है। उसके बाद ये देखें मुल्क के बारे जो जंग हो रही है, इतनी बड़ी जंग जो है ना रुकवाई है पाकिस्तान ने, ये छोटी सी बात नहीं है, ये पाकिस्तान का कुदरती अल्लाह पाक ने इसकी रस्सी जो पकड़ी हुई है, अल्लाह पाक तरक्की दे रहा है पाकिस्तान को, अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्कियों की रास्ते में गामजान इस तरीके से तेजी से जो कर रहा है कि अल्लाह पाक की पीछे जो है ना ये हमारी मदद है अल्लाह पाक की, जो इस तरीके से इतनी तेजी से चीफ मार्शल साहब जो है ना हाफज जो है और कुरान पाक हिफज किया हुआ है, इससे तरीके के अल्लाह पाक उनको और जिंदगी दे, इस तरीके से वो अच्छे पाकिस्तान के ये काम कर रहे हैं। सियासी हवाले से वो खुद देख ले कि ये जो प्रोपोगंडे होते ही रहते हैं, लेकिन हम जो अब डेनमार्क में रहते हैं हम फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट दुनिया में हो रही है, हमारी भी हो रही है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट हो रही है कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है जो कि पूरी दुनिया को अमन के रास्ते में गामजान कर सकता है। राज साहब,
1: चल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया, इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा।
0: जी बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत मेहरबानी, तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। सामान्य नाज़रीन, ये थे चौधरी शौकत जो कि डेनमार्क के मशहूर बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बातें की, दिल की बातें की और बड़ी खुलकर बात की, कोई लगी लिपटी बात नहीं की, एज ए पाकिस्तानी, एज ए सच्चा पाकिस्तानी उन्होंने अपने ज़मीर की बात की। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने नाज़रीन, आज का ताज़ा तरीन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 31/5/2026 का प्रोग्राम है, दारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त आपसे बात कर रहे हैं और आपको ताज़ा तरीन मालूमात भी देते हैं और शहर में खबरें भी गर्दिश करती रहती हैं और लोगों के नाम भी जो है इस्तेमाल हो जाते हैं। लोगों को पता भी नहीं होता कि मेरा नाम किस जगह इस्तेमाल हुआ, मेरा नाम किसने लिख दिया है। तो डेनमार्क की एक बड़ी मौजूद शख्सियत जो कि मुस्लिम लीग काफ के जो है यहाँ पंजाब के वो नायब सदर है, यहाँ इन्होंने अपनी टीम चंद दिन पहले हुए उन्होंने मुकम्मल की, तो एक खबर चल रही थी तो उन्होंने हमने कहा जरा उनसे पूछ लें ये खबर, चूंकि आपकी जमात के नाम से है तो चूंकि आपकी जमात को आप हेड कर रहे हैं, पंजाब के आप नायब सदर है, मिर्जा अजहर बेग साहब आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: बड़ी मेहरबानी मेरी तरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: बेग साहब, मैंने छोटी सी तमीज बांध दी है और आपका जिक्र हुआ कि पाकिस्तान अंबेसी के खिलाफ आपका नाम भी जो इस्तेमाल किया गया, आपकी जमात का नाम इस्तेमाल किया गया, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान अंबेसी के मुतालिक?
2: जी जो भी किसी ने, पहले तो मुझे पता ही नहीं है कि हम लोग किन के साथ खड़े हो गए अंबेसी के खिलाफ। ये बोला कि हम अंबेसी से बायकॉट करते हैं, हमारी अंबेसी है, हमारे पाकिस्तान है छोटा और हमारी नुमाइंदगी करते हैं और हम लोग कभी भी उनके खिलाफ नहीं चलेंगे क्योंकि वो हमारे मुल्क की इज्जत का मसला है। तो ये छोटी छोटी बातों पे जो फेक स्टोरी लगा देते हैं, चला देते हैं, जी हम भी इकट्ठे हैं तो हम बायकॉट करते हैं, जो भी ये छोटी छोटी पार्टियां करते हैं, बुलाते हैं सियासी या गैर सियासी अंबेसी को। मैंने देखा है कि वो हर जगह पे हर मौके पे वो अम्बेसडर साहब और सेक्रेटरी साहब आते हैं। मैं बड़े प्रोग्रामों में गया हूँ जो पाकिस्तानी जो फंक्शन वगैरह होते हैं।
1: तो आप अम्बेसडर साहब के काम से मुतमिन है या अम्बेसी के अमला से मुतमिन है आप?
2: जी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हर बंदे को मैंने देखा कि वो वेलकम करते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है कि ये बंदा बिजनेसमैन है, ये बंदा काम करता है इधर, कोई वो शख्सियत को सलाम नहीं करते, वो एज ए पाकिस्तानी सबको वो सलाम दुआ लेते हुए मैंने खुद भी देखा, मेरे साथ भी उन्होंने सलाम दुआ लिया। मगर कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ लोग जरा पीछे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम होता है, वो अम्बेसी के जाते रहते हैं गा बुगा काम काज के लिए भी वैसे भी। तो वो बंदे को जेलस नहीं होना चाहिए, सब लोगों की सलाम दुआ है, सब की अम्बेसी है, सब जाते हैं, सब बैठते हैं, मिलते हैं। वो कोई वो मसरूफियात में से अगर उनके पास नहीं टाइम होता तो कोई इनवाइटेड करता है तो
1: बेग साहब इसका मतलब हुआ कि आप हमेशा की तरह पाकिस्तान अम्बेसी के साथ खड़े हैं और आप खुद कह रहे हैं एक जिम्मेदार आदमी पंजाब के आप नायब सदर हैं और आप कह रहे हैं कि अम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही है और आपको फेक स्टोरियां आपके नाम फेक स्टोरियां चल जाती हैं आपकी जमात का नाम लेकर।
2: मैं कैसे बहिगान उनको बोलूं कि वो, मैं कैसे कह सकता हूं कि वो पाकिस्तान अम्बेसी अच्छा काम नहीं कर रही हमारी अम्बेसी ऐसे नहीं है ऐसे है
1: वो। लेकिन इस्तेमाल हुआ है ना काफ लीग का नाम इस्तेमाल हुआ, काफ लीग बायकॉट करेगी?
2: जी नहीं नहीं, काफ लीग कोई बायकॉट नहीं करेगी, काफ लीग अम्बेसी के साथ है और हमारी क्यादत कभी भी ऐसे बयान को कबूल नहीं करती। कौन बयान ये दे रहा है हमारी तरफ से, कौन लगा रहा है मुझे बंदा बताए, हम ऐसे नोटिस लेंगे? वो कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई ऐसी बात नहीं कर सकता पाकिस्तान अम्बेसी के खिलाफ जो हमारी पार्टी का बंदा, वो कोई ऐसे नहीं हो सकता।
1: चले बेग साहब, आपका वाजा मौकफ हो गया क्योंकि आप ही हेड है हर चीज के, तो आपने अपना बयान दे दिया, तो बाकी खबर तो खुद फेक आपने कहा, तो फेक खबरें इसी तरह बैठ जाती हैं, जिस तरह चलती हैं इसी तरह बैठ जाती हैं।
2: अम्बेसी हमारे जो देखे ना हमारी क्यादत कभी भी अम्बेसी के खिलाफ हमें कोई भी हमारा बंदा बोलेगा काफ लीग का तो वो नहीं बोलने देंगे, क्योंकि अम्बेसी तो उन्होंने खुद लगाए हैं बंदे, तो हम ही उनको बोलेंगे ये बंदे अच्छे नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। मुझे मेरे नोटिस में होगा तो मैं जरूर नोटिस लूंगा और मैं अपनी क्यादत को भी बोलूंगा, उसका कोई काम नहीं है पार्टी के अंदर जो बंदा अपनी मर्जी से अम्बेसी के खिलाफ बोलेगा। कौन सा अम्बेसी ने हमारे साथ जुर्म किया है या ऐसा काम किया है कि हम अल्लाह माफ करके उनके खिलाफ चलेंगे? नहीं चलेंगे।
1: बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया,
2: बड़ी मेहरबानी।
1: सामान नाजरीन, ये थे मिर्जा अजहर बेग साहब जो के पंजाब के नायब सदर हैं और इन्होंने यहाँ पार्टी को मनज़म किया और उन्होंने फुल जो है बड़े ज़ोर से तरतीद की, वो कानूनी हक भी अपना वो रखते हैं कि उनकी पार्टी का नाम इस्तेमाल किया गया। कोई बात कहना चाहता है तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.